अगर आप होते हो आप भी यही करते। और मैं सिर्फ महज अपनी खुशी अपने इख्तियार से यह काम नहीं कर रहा, जरूरत है उम्मत को, जरूरत है। एक तरफ शख्सी फायदा है, दूसरी तरफ इज्तिमाई और उम्मत का फायदा है। और हमेशा अहले हक ने अपने जाती मफादात को नजरअंदाज किया है उम्मत के मफादात के सामने। उनकी वालदा ने अपने बेटे के खत का जवाब दिया, देखते वालदा ने क्या जवाब दिया। वालदा कहती हैं, वलदी अल हबीब, मेरे प्यारे बेटे अर रज़ी, जिस पर मैं राजी हूं, अहमद इब्न तैमिया, वालेक सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुह व मग़फिरतुह व रिज़वानुह, فإنه والله لمثل هذا ربيتك, बेशक अल्लाह की कसम मैंने आपकी तरबियत सिर्फ इसीलिए ही की थी। ولخدمه الاسلام والمسلمين نذرتك, और मैंने तुम्हें इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया था। नजर जैसे मन्नत मानी जाती है ना, वाला शराए दीन अल्लम तुक, और दीन की शरीयत के इल्म हासिल करने के लिए मैंने तुम्हें आगे किया। वला तगुनन या वलदी, मेरे बेटे कभी ये गुमान ना करना, أن قربك مني أحب إلي من قربك من دينك, कभी ये गुमान न कर बैठना कि आपका कुर्ब मेरे लिए मुझे ज्यादा पसंद होगा कि आप अपने दीन से ज्यादा करीब हो। तो मुझे ये ज्यादा पसंद है कि आप अपने दीन से ज्यादा करीब हो अगरचे मुझसे आप दूर हैं। वह खिदमत को इस्लाम والمسلمين في شتى الأمصار, और आपकी जो खिदमत है इस्लाम और मुसलमानों की दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में, मुख्तलिफ शहरों में, वो आपके लिए ज्यादा महबूब ज्यादा करीब होना चाहिए। बल या वलदी इन गायत रिज़ाई अलैका ला यकूनु इल्ला बिक़द्री मा तुक़द्दिमहु लिदीनिक वलिल्मुस्लिमीन, बल्कि मेरे बेटे मैं तो यह कहती हूं कि अगर आप मुझे राजी करना चाहते हैं तो फिर जो कुछ आप अपने दीन के लिए और मुसलमानों के लिए मुझसे आगे करते रहेंगे मैं आप पर उतना ही ज्यादा राजी होती रहूंगी। वो इन या वलदी लन अस्अलक गदन अमाम अल्लाह, ये जरा सुनने की बात। वो इन या वलदी, ए मेरे प्यारे बेटे, लन अस्अलक, हरगिज नहीं सवाल करूंगी, गदन कल, अमाम अल्लाह, अल्लाह ताला के सामने, अन बुअदिक अन्नी, कि आप मुझसे दूर थे। यह कभी नहीं, अल्लाह ताला के हिसाब के दिन ये कभी नहीं मैं सवाल करूंगी। لأني أعلم أين وفي أين وفيما أنت, क्योंकि मैं जान चुका आप कहां थे और किस चीज पे थे। ولكن يا أحمد, लेकिन अब बेटा नहीं कहा, ولكن يا أحمد سأسألك أمام الله, मैं अल्लाह ताला के सामने आपसे सवाल करूंगी, وأحاسبك, और तुम्हारा मुहासबा करूंगी, إن قصرت في خدمة دين الله, अगर अल्लाह ताला के दीन में कोई तकसीर की है या कोई कमी तुमसे हुई है, तब मैं अल्लाह ताला के सामने कयामत के मैदान महशर में अल्लाह ताला के सामने तुमसे पूछेंगे, ए मेरे बेटे तुमने क्यों, बेटा नहीं, ए अहमद, तूने क्यों अपने दीन में सुस्ती की है, क्यों अपने दीन में आपने काहिले से काम लिया है। मुकसरत फी खिदमत दीन अल्लाह व खिदमत अतबाई मिन इख्वानिकल मुस्लिमीन, दीन की खिदमत में कोताही या अपने मुसलमान भाइयों की जो इस दीन की इत्तबा करने वाले हैं उनकी खिदमत में अगर आपसे कोई कोताही हुई है, कोई कमी हुई है, तो कयामत के दिन मैं अल्लाह ताला की बारगाह में सवाल करूंगी। रज़ी अल्लाहु अन्क, अल्लाह ताला तुझसे राजी हो, वह अनार बिल खैर दरबक, अल्लाह ताला तुम्हारे रास्तों को खैर के नूर से रोशन कर दे, वह सद्दद खुफाक, और तुम्हारे कदमों को अल्लाह ताला सही सलामत और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व जमाअनी व इय्याक तहत ظله يوم لا ظل الا ظله, मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूं कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने अर्श के साये तले जमा करे जिस दिन
اس کے عرش کے سائے کے سوا